0: Okay, now I would like to introduce you to my very good friend, an amazing guy, and a super cool singer, Siddharth Mahadevan, on stage, please.
1: Thank you.
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लग तो रहा था कि होने वाला है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा कंफर्म लग रहा है कि ये होने वाला है।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: दोनों साथ में, विराट कोहली ने एक्चुअली कह दिया एक बिहारी सब पे भारी, बट अपार्ट फ्रॉम रीसेट के भाई अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेक श्योर कि ये जो हुआ है इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ स्पार्कलिंग करियर। आई मीन जस्ट कम टू थिंक ऑफ इट, देयर्स अ more than 20 year age gap between Virat Kohli and Vaibhav Suryavanshi, which is like I think a couple of generations in cricketing terms, and he's going to look back at this and it's going to be one of those legendary clips in the future. But coming back to kya hone wala hai, hone wala tha aur ho gaya hai almost, is Surya Kumar Yadav will not be the captain of the Indian T20 squad. That's what confirmed rumors, it's almost like genuine fake wali baat hai. But yeah, Surya Kumar Yadav 99% chance he is not going to be the captain of the Indian team. That's what reliable sources are saying. Now, it's a three-way fight between Ishan Kishan. Then there is Shreyas Iyer. And the third one is Rishabh Pant. In teen ke, Rishabh Pant to ya T20 squad mein hai bhi nahi, to how can he be one of the contenders for this? There is also Tilak Verma's name that is coming up. So, forget about Rishabh Pant. But Tilak Verma, Shreyas Iyer, एंड ईशान किशन, ये तीन लोगों के बीच में देयर इज अ थ्री वे फाइट के कौन बनेगा इंडिया का नेक्स्ट T20 कैप्टन। आई थिंक आई शुड डू अ पोल क्वेश्चन ऑन दिस ऑन आर इंस्टाग्राम। हमें फॉलो नहीं करते तो क्या कर रहे हो भाई, बहुत आपको वहां पर इंफोटेनमेंट मिलता है, इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन रिलाई ऑन, एंड एंटरटेनमेंट ऑफकोर्स दैट इज वर्ल्ड बेस्ट वेन इट कम्स टू रिचार्जिंग योर बैटरीज। 106.2 बिग FM, दैट्स द इंस्टा हैंडल दैट यू हैव टू फॉलो, 106.2 बिग FM, सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए इन केस आप नहीं करते। हु डू यू थिंक should be India's next T20 ka captain? Surya Kumar Yadav, Ishan Kishan, ya phir Tilak Verma? Arijit Singh with the Safar coming up in just a while. On that Hindi wala Safar, aapka Angrezi wala Safar kam karne ke liye, this is The Big Breakfast with me, Sid.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: It's the 4th of June. And there's something special that's happening on Netflix today. Something that I've been waiting for. A film called Ma Behen is coming out.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Khabrai nahi, isme gali garoch ka koi zyada scene nahi hai. It's got a rating of 13 plus, suitable for ages 13 and above. Aaj 4th of June Netflix pe release hone wali hai. Ma is Madhuri Dixit. And दो बहने इसके अंदर, बड़ी बहन इज तृप्ति डिमरी एंड छोटी बहन इज धरना. कौन धरना, क्या कर रहे हो यार? सोशल मीडिया की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है ऑन इंस्टाग्राम. एंड इफ देर इज समवन वन पर्सन हुज हैविंग अ स्लीपलेस नाइट, इट इज धरना. बिकॉज ज्यादा प्रेशर होगा ना उसके ऊपर, स्पेशली व्हाट हैपेंड विद सौरभ द्विवेदी उर्फ लल्लन टॉप इन कर्तव्य. उसके बाद तो कुछ ज्यादा ही, शी मस्ट बी फीलिंग द हीट. बहुत बड़ा डिबेट छिड़ गया है कि शुड यू नो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया, शुड दे गेट प्रॉपर फिल्म रोल्स और नॉट. सो नाउ सेकेंड इंस्टॉलमेंट पार्ट टू ऑफ दिस डिबेट इज गोइंग टू बी बाय धरना. शी इज द टॉर्च बेरर of influencers in a film. So, kuch zyada hi pressure hoga. Much more than Tripti Rimdi and Madhuri Dixit. But the difference is ke Dharna apne social media pe bhi acting hi karti thi. So, if she's probably going to be a better fit for somebody to make a transition to the movies. But only time will tell. Dekhte hain ki film kaisi hai. But in the meanwhile, if you want to listen to what the film sounds like, there is a dhasu gana iske andar called Kari Kari. Isme bahut hi amazing bhojpuriya masala hai. So is gaane ke through you'll get the soundscape of the film. 1 minute ka ye ek what do you call it, like a song teaser trailer with some visuals thrown in, some dialogues from the film. So let's listen saath milkar. Here's Ma Behen.
2: Aaj hum karenge chauka dene wala khulasa jisne macha di pure shehar mein. खलपली

माधुरी दीक्षित, दैट्स सम अमेजिंग मोमेंट्स इन दिस मूवी यार. मतलब सामने लाश पड़ी हुई है एंड देन शी आस्क्ड चाय बना लेंगे. एंड देन आई फॉरगॉट टू टेल यू, रवि किशन भी है इसमें. दैट ऑलवेज ऑलवेज हेल्प्स. आई होप दैट दिस फिल्म गिव्स माधुरी दीक्षित द काइंड ऑफ रोल दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर इन. सो या माँ बहन, आउट ऑन नेटफ्लिक्स आज द 4th of June. भाई रणवीर सिंह ने लीगल नोटिस भेज दिया FWIC को एंड अब मामला शायद रफा दफा हो गया. इट्स बिकम ठंडा. मोर ऑन दैट कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दैट एंटायर रणवीर सिंह वर्सेस FWIC, द यू नो वर्कर्स एसोसिएशन इन बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दैट ड्रामा दैट हैपेंड. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: good.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: 2 splendid years of Insurance Market Metro Station. 2 years of helping the UAE move, choose and stay protected. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. InsuranceMarket.ae.
4: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
7: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
8: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: ठीक 7:30 on this Thursday morning. Let's start with the capital. You'll find a bit of congestion building up going towards Masdar City. And this is on E20. And then congestion building up Abu Dhabi University ki taraf jata hua. Traffic E22 par. चलते हैं दुबई शारजा की ओर, DLC लॉजिस्टिक सिटी दुबई साउथ हेडिंग नॉर्थ, अ बिट ऑफ कंजेशन। देन देयर इज E44 अखेल रोड पर गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस वे फ्रॉम D3 एंड द सेकंड पॉकेट इज एट अल कूज फोर्थ ऑन E44। चलते हैं 311 की ओर, यहां पर आपको मिलेंगे 2-3 पॉकेट्स ऑफ ट्रैफिक। सबसे पहले ऑफ कोर्स हेडिंग टुवर्ड्स सिटी सेंटर मिर्ज़ी, फ्रॉम सिटी सेंटर ज़ाया दैट एंटायर स्ट्रेच यू विल फाइंड अ 7-मिनट डिले आउट देयर। देन अलवरका 1 क्रॉस करके DSO की तरफ जाता हुआ भी एक और पॉकेट ऑफ ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। देन एयरपोर्ट रोड पे आज ट्रैफिक है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स देरा ऑन D89 E11 पर, इतिहाद रोड पर अलनादर इंटरचेंज 1 पे आपको मिलेगी 7-8 मिनट की देर। वाटर फ्रंट इन देरा इज गेटिंग अ बिट कंजेस्टेड गोइंग टुवर्ड्स फिश मार्केट हेडिंग साउथ। एंड 611 एमिरेट्स रोड पर भी 3-4 मिनट की देर गोइंग टुवर्ड्स अल अवीर।
8: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Brother,

0: पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2।

0: आगे पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Beat 106.2, the beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: कुछ सौदे मुझे कभी भी समझ में नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई इज डेंटिस्ट्री नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंस?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: लेट्स सी इफ डॉक्टर श्वेता कैन शेड सम लाइट ऑन दिस. डॉक्टर श्वेता, ये डेंटिस्ट आप लोग का काम ये इंश्योरेंस में कवर्ड क्यों नहीं होता है? आप लोग क्यों इतने महंगे क्यों होते हो आप लोग?
2: हम लोग महंगे नहीं होते यार, इट्स जस्ट लाइक द काइंड ऑफ वर्क.
0: सॉरी, लेट मी रीफ्रेज दैट. आप लोग इतना भाव क्यों खाते हो?
2: कहाँ भाव खा रही हो? देखो, अच्छे से कॉल किया, बात कर रही हूँ.
0: ओह माय गॉड,
2: नहीं खाते. इट्स जस्ट
0: आई एम ब्लेस्ड टू हैव डॉक्टर श्वेता द महंगी डेंटिस्ट विद मी ऑन द फोन लाइन. बट व्हाई इज इट नॉट कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज? या क्या सीन है यार, इतना दर्द होता है आपके रूट कनाल, फूट कनाल, मतलब क्या चल क्या रहा है ये? करो कुछ इसके बारे में.
2: See, dental pain, I mean, tooth

0: pain is always, it's painful.
1: Yeah.
0: But that's why we are here, right? So when you come to see us, we relieve that.
1: But then we get the bill, which is even more painful. If you put a root canal and a bill and the dentistry ka bill side by side, the bill is more painful than the
0: root
1: canal.
0: It is not very. I mean, it's sad that nowadays a lot of insurances don't cover, but some of them do. But that is, and the amount of work also that goes into it.
1: I agree. So, I completely agree. You guys are like very hardworking, very very well paid also. But ek baar to mere dad ne na poochi liya tha. I don't know still date if he was joking or not, because I went with a tooth problem and uska jo cost hai sunke dad ka reaction tha. But doctor saab mukka maar ke tod do na.
0: Yeah, seriously. नहीं यार, डेंटिस्ट्री है, इट्स सो अंडररेटेड, यू नो,
1: इट इज,
0: तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ. आई मीन, व्हाई वोंट यू स्पेंड ऑन, आप अभी जाते हो, यू नो, यू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, यू गो टू एनीबडी एल्स, यू डोंट थिंक, राइट? सो दैट इज ऑल्सो, डेंटिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ. So it's a part of you taking care of yourself.
1: I'm sure the amount of money that you guys make, you're not complaining. So please give me a break, okay? ठीक है, ज़्यादा पोज मत मारो जैसे कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है आपके साथ, ठीक है? But चलो, let's get down to business. I think the person जो सबसे ज़्यादा मुंह खोल के, गला जिनका सबसे खुला था जब वो गाते थे, then I mean, I attended a concert in a tennis stadium. There was SP, SP sir, there was Asha Bhosle, fabulous concert. यार उसमें,
0: oh amazing,
1: मतलब I had goosebumps the whole time that SP was singing.
0: That is an amazing,
1: है ना? मतलब ऐसा लग रहा था कि सारा शहर गूंज रहा है उनकी आवाज से. It's such a खुली आवाज. So it's his birth anniversary, and last time I'd asked you a question के दो गाने मैंने आपको सुनाए थे, there were several. So let's kind of play those songs out one more time. People just tuned in. First one was this one. इस गाने का पता नहीं क्यों Instagram पे रिवाइवल हो रहा है आजकल ना.
0: हाँ,
1: lots of reels I've seen. It's a lovely song. Yeah, yeah. It's a film called Love. I think Revati was
0: love,
1: in
0: love.
1: This one.
0: हाँ, Revati and Salman.
1: And the other one is this one. What songs are? So SP
0: Sajan,
1: yes. So
0: no?
1: एक एक्टर है जिसके लिए SP बालसुब्रमण्यम की वॉइस वाज टेलर मेड. ऑल्दो व्हेन यू पुट देम साइड बाय साइड, यू कांट इमेजिन कि एसपी कुड सिंग फॉर सलमान, बट सलमान खान इज द करेक्ट आंसर. एंड आपने जीते दो ओपन मूवी टिकट्स. कांग्रेचुलेशंस.
0: ये, थैंक यू.
1: इफ यू वर टू टेक अ पेशेंट अलोंग विद यू, कोई ऐसे अतरंगी एक्सपीरियंस बताओ ना कि रिसेंटली कोई ऐसा हुआ कि पेशेंट ने आपके नाक में, सॉरी, दांत में दम कर दिया हो.
0: अरे यार, होते रहते. नो, बट ऑल माय पेशेंट्स आर जनरली ओके, गुड, बट यू नो, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी एंग्जियस. यार, तो डीलिंग विद एंग्जियस पेशेंट्स इज टफ. सो एवरी टेक्स प्रोसीजर रहता है 20 मिनट्स का, एंड देन इट गोज ऑन फॉर 1 आवर. अदरवाइज जनरली ऑल ऑफ देम, मतलब यू नीड टू टॉक देम इनटू इट. बहुत सारे लोग डरते हैं डेंटिस्ट से.
1: और डरना चाहिए भी.
0: आफ्टर द प्रोसीजर पर ठीक रहता है, सिर्फ ऑल ऑफ देम गो आउट लाइक ठीक है, उतना भी नहीं था जितना हमने किया था.
1: आई टेल यू व्हाट द फनीएस्ट थिंग इज, माय ट्रेनर ना, माय जिम ट्रेनर इज मॉर्टली अफ्रेड ऑफ डेंटिस्ट. ही इज लाइक, वैसे तो बड़ी बड़ी फिजिक विजिक, यू नो, डोले शोले फुलाता रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू गोइंग सिटिंग इन द डेंटिस्ट चेयर, दैट इज द वन थिंग दैट रियली स्केयर्स हिम. एंड सबसे पहले हाय हेलो नहीं, सीधा बोलता है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया. So yeah, Jolly, it was an absolute pleasure talking to you, Shweta, and keep up the good work. And thanks so much for taking part. Yeah, congratulations.
0: That is, thank you.
1: Shweta, Dr. Shweta has won 2 passes, and aapke paas bhi mauka roz subah hi aata hai to take part in the big Bollywood quiz. Flex your Bollywood muscle and walk away with 2 open movie tickets. Big 106.2.

0: 101.2. The Beat of Bollywood.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Need a car? The Carfair Group has you covered. From daily rentals to long-term leases and even lease to own. Sedan, SUV, luxury or commercial. Pick your ride, your way, your budget. Backed by 25 plus years of trust and 24/7 support, this is mobility made easy. Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions.
3: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
5: This June, it's game on with Big Ticket.
6: A guaranteed 25 million dirhams up for winning.
5: Plus, 5 more winners taking home 1 million dirhams each.
6: And 4 25,000 dirhams winners every week, all the way to the final whistle.
5: Score big, there's plenty in play.
6: Buy your ticket now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
8: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें, सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
9: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: 8:30 on the clock, and आपको नहीं लगता कि the traffic is unusually well behaved these days? क्या चल क्या रहा है? मतलब लोग दो हफ्ते की छुट्टी मिल गई क्या लोगों को? But ऐसे ही कुछ माहौल है, 311, E11, very very well behaved. Max 8 to 9 minutes extra you'll be spending out there, heading south, going towards Dubai from Sharjah. And ये तो कुछ भी नहीं है, you know, right? Altaun Street पर भी थोड़ा बहुत traffic आपको मिलने वाला है. D62 Behru Street is a bit congested. S112 पे रोज की तरह in Sharjah Industrial you'll find traffic in both directions going east and west. 611 पर आपको traffic मिलेगा 3-4 मिनट का going south, going towards Al Aviv. Then there's a bit of congestion in Al Karama. D75 पर going towards Dubai Frame you'll find a bit of congestion. Al Khail Road पर 44 going towards Business Bay from D3 Russell Core Industrial is getting a bit busy on E44, and then Al Khus 4th पर भी आपको मिलेगा हल्का फुल्का traffic.
9: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
11: Are you going to?
12: Yeah.

0: Why should there only be awards for films, right? For sport. Why can't there be awards for, say, like politicians?
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Agar aisa hota, then I'm sure Shashi Tharoor would win every year for the most entertaining politician back home in India. And jab bhi wo kuch kehte hain to wo news ban jati hai, chahe wo apni kuch tod phod English ka use karte hain, and then people start Google searching the meaning of those words, or he says something so entertaining that you know, you're kind of forced to sit up and take notice. So this time he has called it a historic moment. What the FIFA World Cup that is coming up, usme bahut sare Indian origin players hain. इंडिया की टीम तो अच्छा करती नहीं है फुटबॉल में, लेकिन इंडियन प्लेयर्स बाहर जा जाके काफी अच्छा कर रहे हैं भाई. इट्स अमेजिंग टू हैव सम इंडियन ऑरिजिन प्लेयर्स, एंड इट्स एक्चुअली अ फेदर इन द हैट ऑफ ऑल ऑफ अस एक्सपैट्स आल्सो, राइट? बिकॉज़ इतने सारे प्लेयर्स हैं, स्पेशली दिस गाय कॉल्ड तहसीन मोहम्मद जमशेद, 19-year-old विंगर, इज बॉर्न इन दोहा टू इंडियन पेरेंट्स, एंड ही इज बीन इंक्लूडेड फॉर द 26-member कतार टीम फॉर द वर्ल्ड कप US, कैनेडा एंड मेक्सिको में. सो इज दैट एब्सोल्युटली अमेजिंग यार. सो देयर इज ऑल्सो अ 25-year-old विंगर, एंड देन देयर इज अ प्लेयर कॉल्ड वलुपिले, हाँ वलुपिले नाम का एक प्लेयर है, एंड ही इज ऑल्सो गोना बी इन द वर्ल्ड कप दिस टाइम. सो लॉट्स ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन. विकास धुरासु वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन प्लेयर हु प्लेड फॉर फ्रांस इन 2006 वर्ल्ड कप फाइनल तक जो टीम पहुंची थी. विकास धुराशु प्रूव्ड दैट यू नो पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन कैन रियली रियली गो फार व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल एंड फीफा. एंड निशान वालुपुली की मैं बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा होने वाले हैं. सो टू पीपल टू लुक आउट फॉर, तहसीन मोहम्मद जमशेद, 19-year-old विंगर, प्ले फॉर कतार नेशनल टीम, एंड देन देयर इज निशान वालुपुली, एंड ही इज गोन बी प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. इज इन देयर एब्सोल्युटली अमेजिंग. स्टार्ट्स एग्जैक्टली इन 1 week time. The first game is going to kick off at 11 p.m. UAE time. That's going to be South Africa versus Mexico. 1, 2, 3, go! Phool Bhulaiyaa 3 ka trailer coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
2: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
3: उड़ी बाबा.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: 8:42 on the clock, and let's take a look. सबसे पहले at S102 Sharjah Ring Road पे आपको traffic मिलने वाला, industrial area 15-17 के बीच में, heading north, heading east and west rather than University of Sharjah. S112 पे भी आपको traffic मिलने वाला है. Then 611 पर heading south going towards Alawir, there is a 6-minute delay. 8 to 9 minutes extra you'd spend at 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. इसके अलावा Beirut Street, Damascus Street पर traffic is building up. 44 Al Khail Road पर going towards Business Bay from Russell Core, and then Alkoos Fort पर भी आपको मिलेगी 3 से 4 मिनट की देर.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: 8:50 on this Thursday morning, and मतलब भूल भुलैया of an entire situation between Farhan Akhtar and Ranveer Singh. Now it seems to be coming to an end.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: I mean, I don't know what happened to the 40 crores जिसका दावा Farhan Akhtar ने कहा था कि यार 40 करोड़ already हम लोग खर्च कर चुके थे on the pre-prep for Dawn 3 before Ranveer Singh just decided to up and leave. And I think recently when somebody asked, Farhan Akhtar ne ek interview mein kaha that he actually went and asked Ranveer Singh quite candidly ki agar Dhurandhar utni badi hit nahi hui hoti jitni ki hui, would you have left Dawn 3? He said no, I wouldn't have, but because it's been such a big hit then. But yeah, what happened to the 40 crores? I don't know, but wo jo FWICE aur Cinta, Cinema and Television Actors and artists ka jo association hai, उन्होंने एक कोर्ट केस कर दिया था अगेन रणवीर सिंह. नाउ रणवीर सिंह ने वापस से एक केस किया अगेंस्ट देम एंड नाउ इन अ कंप्लीट यू टर्न दिस इज व्हाट दे हैड टू से अबाउट हिम.
2: मतलब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को मैं कहूंगी कि अभी खड़ा कर दिया है. इंडस्ट्री का आप सब जानते हैं कि कितनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, हमारी इंडस्ट्री किस किन हालातों में से गुजर रही है, और उनकी धुरंधर 2 जो उन्होंने बिजनेस किया है वो मतलब उन्होंने हिस्ट्री बना दी है. सो ऐसे एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है जिनकी फिल्में लोग लाइक करें. तो हमारी तो बेस्ट विशेज हैं रणबीर जी को कि वो इसी तरह से हिट हिट फिल्में देते रहें और हमारी इंडस्ट्री में इतना पैसा जनरेट होता रहे.
0: इसे कहते हैं यू टर्न. स्पीकिंग अबाउट धुरंधर द रिवेंज, हियर इट इज, आरी आरी फ्रॉम दैट फिल्म. All seems to be well when it comes to the FWICE. So there's no ban on Ranveer Singh anymore, that is for sure. This is The Big Breakfast with me, Sid, right here on Big 106.2, a part of the Funnation Network.

0: है ओडीआई तो विराट कोहली को खेलना है, लेकिन देयर इज सम न्यूज जस्ट इन, विराट कोहली इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ओडीआई स्क्वाड अगेंस्ट अफगानिस्तान.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: अभी अभी मिली खबरों के अनुसार विराट कोहली इज आउट विद अ हैमस्ट्रिंग इंजरी. रिमेंबर द फाइनल

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Need a car? The Carfair Group has you covered. From daily rentals to long-term leases and even lease to own. Sedan, SUV, luxury or commercial. Pick your ride, your way, your budget. Backed by 25 plus years of trust and 24/7 support, this is mobility made easy. Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions.
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
3: Listen to her every day.
4: Mugambo, khush hua.
5: अंकित जिनसे मैंने नंबर मांगा इनका, तो ये शांत हो गए थे. देयर वाज ऑकवर्ड साइलेंस बिटवीन अस फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. व्हाई?
6: क्योंकि काफी टाइम से किसी ने मेरे से नंबर नहीं मांगा.
5: कैसा लगा फिर अंकित, इतने टाइम बाद एक खूबसूरत लड़की ने आपसे नंबर मांगा?
6: तभी मैं 10-12 सेकंड के लिए
5: कॉलेज में तो मांगा होगा लड़कियों ने नंबर, आपका नहीं मांगा था?
6: नहीं, मैंने भी कभी नहीं मांगा.
5: अरे अरे, ऐसा क्यों एकदम? ये क्यों आप एकदम बिना तड़के की जिंदगी जी रहे हैं?
6: पता नहीं, अब उस टाइम पर और चीजें थी करने को, इंटरेस्ट और चीजों में था, तो इसलिए.
5: कॉलेज में तो हर किसी का इंटरेस्ट इसी चीज में होता है, और तो कहीं दिल लगता नहीं है. आपका किस चीज में था? करियर में?
6: थोड़ा बहुत पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट.
5: हाँ, पता है, जब मैं स्कूल में थी ना, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो लड़के जो नर्ड्स होते थे, चश्मे वश्मे पहन के पढ़ा. मुझे आज भी बहुत क्यूट लगते हैं, थोड़े से भोलू होते हैं, और यू नो देयर इज द शाय, द कॉय टाइप्स, एकदम अंकित की तरह. हो गई शादी वादी आपकी?
6: हाँ, काफी टाइम हो गया.
5: हाँ, तो फिर इतनी लंबी क्यों बात कर रहे हो? सीधा टिकट लो और घर जा.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, द बिग थ्रिल विद नॉन्सी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: 9:24 on the clock and traffic, wahi as expected, no big surprises on the roads this morning. Aaj subah se yahi haal hai, 311 E11 heading south.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

think of any other movie jisme female actress ne the character has only worn a sari in the entire movie. अगर सूझ रहा है बताओ मुझे. 800-1062 इज माई टोल फ्री नंबर. मैसेज भी कर सकते हो 4305. इन द मीन टाइम द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग जब मिस चांदनी चलकर आती है और जो गाने बजने लग जाते हैं, दिस इज द वन दैट वन हार्ट्स एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल ऑन द बिग मिक्स विद मी ज़ोरा. गुड मॉर्निंग.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
3: अलराज कहाँ है, कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
2: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big Weather Update brought to you by Alras, the number one auto spare parts dealer in the Middle East.
7: Bright and sunny day, 34 degrees Celsius bahar. It feels like 41, although garmi kafi zyada ho chuki hai. Humidity at

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
4: हाँ जी, ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर ऑन E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, लाइट ट्रैफिक मिल जाएगा मुहैसना 4 के पास, ऑल्सो S102 शारजा रिंग रोड, हैवी ट्रैफिक, कम से कम 10 मिनट का वहां पर डिले। D73 नादा स्ट्रीट गिसेस 2 के पास भी लाइट से मोटर ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। E11 इतिहाद स्ट्रीट हेडिंग टूवर्ड्स अलगुद स्ट्रीट एक कार एक्सीडेंट हुआ है वहां पे, विच इज कॉजिंग एटलीस्ट अबाउट अ 12-15 मिनट डिले ऑन दैट रोड। D83 रिबात स्ट्रीट लाइट से मोटर ट्रैफिक वहां पर, ऑल्सो E44 रासलखोर रोड D3 के पास बम्प टू बम्पर ट्रैफिक विच इज यूजुअल, अराउंड 8-10 मिनट्स का वहां पर डिले। एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ है अराउंड दैट एरिया इटसेल्फ D72 अलसायल स्ट्रीट के पास। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे।
3: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big. Woo! Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

बैक व्हेन यू कुड एक्चुअली सिंग अलोंग टू सॉन्ग्स, क्योंकि आपको लिरिक्स सारे के सारे आते थे. आजकल के लिरिक्स ही ऐसे हो जाते हैं कि किसी को याद ही नहीं रहते यार. मतलब ऐसे गाने बनाओ ना जो इंसान यू नो रटना चाहे कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू सिंग अलॉन्ग टू दीज सॉन्ग्स. ब्यूटिफुली संग चित्रा की आवाज़ रफ्तार रफ्तार राइट हियर ऑन द बिग मिक्स. वी हेडिंग इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो. इंटरेस्टिंग डिबेट इन द सेकंड आवर. डू यू थिंक ये जो नया अपडेट एप्पल लेकर आने वाला है, इज दिस यूजफुल और नॉट, स्पेशली इफ यू फील लाइक यू नो यू डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर इनफ फॉर समथिंग एंड यू फील लाइक यू नो आई वॉन्ट बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट, यू कुड बी इन ट्रबल बिकॉज एप्पल नोज दैट यू हैव दीज कॉन्स्पिरसीज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड देर वर्किंग ऑन सम thing against it. Kis cheez ki baat kar rahi hoon? More on that in the next hour. You're with me, Zohra. This is the Big Mix. Good morning.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2

साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मस्कारा, मैं वापस आऊंगा से राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द वीर ऑफ बॉलीवुड. 11:51 हो चुके हैं. वी हेडिंग इनटू आवर नंबर 3. इंटरेस्टिंग न्यूज फॉर यू. अगर आपको ओपन मूवी टिकट्स जीतनी है, कपल ओपन मूवी टिकट्स आपको अगले घंटे में जीतने का चांस मिल रहा है. ऑल यू गॉट टू डू इज आंसर अ सिंपल बॉलीवुड क्वेश्चन. दिस इज द बिग बॉलीवुड क्विज. सही जवाब अगर आपने मुझे दिया, यू आर गोना वॉक अवे विद दीज ओपन मूवी टिकट्स. सो इफ यू आर अ बिग बॉलीवुड फैन, देखो कल एक पिक्चर रिलीज हो रही है. हिंट दे रही हूँ मैं आपको अभी से, अपना होमवर्क कर लेना ठीक है. वरुण धवन स्टारर है जवानी तो खोना इज रिलीजिंग टुमारो. सो आई एम गोना बी आस्किंग समथिंग अराउंड दैट, नॉट अबाउट द मूवी बट समथिंग अराउंड दैट. सो जस्ट गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ अ हिंट इन द नेक्स्ट आवर द बिग बॉलीवुड क्विज.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो.
2: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूं.
3: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग 106.2. That's My Song by E. And.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
0: इसी बात पे तुझे जादू की झप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे बाबा।
2: ये सुनो।
5: डॉक्टर श्वेता, ये डेंटिस्ट आप लोग का काम ये इंश्योरेंस में कवर्ड क्यों नहीं होता है? आप लोग क्यों इतने महंगे क्यों होते हो आप लोग?
6: हम लोग महंगे नहीं होते यार, इट्स जस्ट लाइक द काइंड ऑफ वर्क।
5: सॉरी, लेट मी रीफ्रेज दैट। आप लोग इतना भाव क्यों खाते हो?
6: कहाँ भाव खा रही हो, देखो अच्छे से कॉल किया, बात कर रही हूँ।
5: ओह माय
6: गॉड, खाते हो जस्ट।
5: I am blessed to have Dr. Shweta, that mangy dentist, with me on the phone line. But why? Is it not considered to be a part of essential services? Yeah.
6: See, dental pain, I mean, tooth pain is always, it's painful.
5: Yeah, but then we get the bill, which is even more painful.
6: It is not very, I mean, that is, and the amount of work also that goes into it.
5: I agree, so. I completely agree. You guys are like very hardworking, very, very well paid also. But ek bar to mere dad ne na poochi liya tha. I don't know till date if he was joking or not, because I went with a tooth problem and uska jo cost hai sunke dad ka reaction tha. But doctor saab, mukka maar ke tod do na.
6: Yeah, seriously.
2: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big. Woo! Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बुड्ढे
1: नमस्ते।
0: पहले आप आदर कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
1: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
0: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
4: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आंसर देना होता है एंड यू वॉक अवे विद ओपन कपल मूवी टिकट्स. सो विद मी ऑन द फोन लाइन राइट नाउ इज कोशा. हाय कोशा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे.
1: हाय सोरा, हाउ आर यू?
0: अब हाँ हाँ, थोड़ा और चिल्ला के बात करो.
1: आई एम सो सॉरी इफ यू कांट.
0: इट्स ओके, आई कैन हियर यू नाउ. कोशा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली फाइंड योर नेम वेरी यूनिक. मतलब क्या है इस नाम का?
1: इट्स अ ट्रेजर बॉक्स.
0: वाओ, अ ट्रेजर बॉक्स. आपके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत डाली इन नेमिंग यू.
1: Yes.
0: Do you have kids, Kusha?
1: Thank you so much. Yes. And two twins.
0: What
1: I have.
0: What have you named your twins?
1: they are Kiara and Kea.
0: आप कुछ यूनिक नाम नहीं रख सकते थे?
1: No, it's a unique only because I have identical twins.
0: So
1: I kept the elder one is Kiara, means a pot, and the younger one is Kea. Kea means the flower.
0: That is so sweet. Yeah. Oh, you have put a lot of thought in naming them. That is so sweet, yeah.
1: Thank you.
0: And
1: so
0: it is nice.
1: Also kept
0: all of
1: by
0: you
1: my
0: are
1: mother only.
0: Oh, all of you are named with K. That is so sweet. Like, मतलब ये करंजोर वाले काम हो रहे, जैसे वो पिक्चरों के नाम K से रखते थे, आप बच्चों की पूरी जनरेशन के नाम K से रख रहे हो.
1: Yeah, we all are Gen.
0: वेरी वेरी कूल. अच्छा कोशा, मैंने आपको ये गाना सुनाया था विच इज फ्रॉम द डेब्यू मूवी ऑफ वरुण धवन. आपको मुझे बताना है ये गाना कौन सी मूवी से है.
1: इट्स स्टूडेंट ऑफ द ईयर.
0: पक्की बात है ये?
1: यस पक्की बात है. तालिया भट्ट एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा.
0: अरे very good, congratulations, you've given me the right answer. Kosha, you are walking away with open couple movie tickets. Ab kisko lekar jaoge?
1: Thank you.
0: मतलब अकेले जाओगे? किसको लेके जाओगे?
1: नहीं, मेरे हस्बैंड को लेके जाऊंगी.
0: और ट्विंस फिर? चलो ग्रेट ग्रेट, गो हैव फन, एंजॉय वॉचिंग अ मूवी ऑफ योर चॉइस. थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय.
1: Bye.
0: That was Kosha with us on the phone lines. If you too would like to win, we play the big Bollywood quiz on all our shows. All you have to do is keep listening and keep trying.
2: Beat 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो मुझे कहती है नाना, द मोस्ट रियलिस्टिक लिरिक्स रिटन एवर. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, यू विद मी ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स.
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: फिलहाल हम खेल रहे हैं द बिग बॉलीवुड क्विज.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood The Big Mix brought to you by insurancemarket.ae.
2: insurancemarket.ae.
1: Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
1: ये सुनो
4: डॉक्टर श्वेता, ये डेंटिस्ट आप लोग का काम ये इंश्योरेंस में कवर्ड क्यों नहीं होता है? आप लोग क्यों इतने महंगे क्यों होते हो आप लोग?
5: हम लोग महंगे नहीं होते यार, इट्स जस्ट लाइक द काइंड ऑफ वर्क।
4: सॉरी लेट मी रीफ्रेज दैट, आप लोग इतना भाव क्यों खाते हो?
5: कहाँ भाव खा रही हो, देखो अच्छे से कॉल किया बात कर रही हूँ।
4: ओह माय गॉड,
5: नहीं खाते हैं जस्ट।
4: I am blessed to have Dr. Shweta, the mangy dentist, with me on the phone line. But why? Is it not considered to be a part of essential services? Yeah.
5: See, dental pain, I mean, tooth pain is always, it's painful.
4: Yeah, but then we get the bill, which is even more painful.
5: It is not very, I mean, that is, and the amount of work also that goes into it.
4: I agree, so. I completely agree. You guys are like very hardworking, very very well paid also. But ek baar to mere dad ne na poochi liya tha. I don't know still date if he was joking or not, because I went with a tooth problem and uska jo cost hai sunke dad ne ka reaction tha. But doctor saab, mukka maar ke tod do na.
5: Yeah, seriously.
1: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
6: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर ऑन E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, आपको मिलेगा थोड़ा सा ट्रैफिक मुहैसा 4 के पास। ऑल्सो S102 शारजा रिंग रोड, अभी तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहां पे, 8 से 10 मिनट का डिले। E44 रसलखोर रोड, एक कार एक्सीडेंट हुआ था D3 के एग्जिट के पास, तो वहां पे उस वजह से अभी तक थोड़ा सा ट्रैफिक 6 से 7 मिनट का वहां पर लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा ट्रैफिक है ऑन D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट बम्पर टू बम्पर, बट जस्ट फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे।
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
3: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 35 डिग्री सेल्सियस बाहर यार, इट फील्स लाइक 41, बहुत ज्यादा गर्मी। ह्यूमिडिटी एट द मोमेंट 60% को छू चुकी है एंड इट इज जस्ट गेटिंग हॉटर बाय द डे। लोज विल टच अबाउट 31 लेटर टुनाइट। ज़ोहरा के साथ हूं आप, दिस इज द बिग मिक्स।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग। Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, song of the hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: 117 on the Big Log. Hanji, show ka aakhri ghanda chal raha hai. Zohra ki saath until 2. Hum filhaal khel rahe hain The Big Bollywood Quiz. Once again, jinko chance nahi mila participate karne ka ya jeetne ka, you still stand a chance because I just feel like it, you know. Itni garmiyan chal rahi hai, I feel like kuch to acha ho hai na in garmiyon ke beech. And I just feel like in garmiyon ke beech, mere liye koi achhi cheez hai, to wo sirf aur sirf chai hai. I know, unpopular opinion. A lot of people prefer the cooler drinks, the mojitos and the, you know, the colder drinks basically during the summers. Lekin main opposite hoon. Mujhe in garmiyon mein bhi, chahe 40 degree ho, 50 degree kyun na ho, mujhe meri chai chahi. I am that person and I feel like a lot of people out there are like me because I have checked it. I have myself tested this ideology and out of the 10 people, random people that I spoke to, kuch dost bhi the, 8 of them said yes, we would prefer having our, you know, kadak chai. बस चाय किसी कैसी भी हो, फ्रेश मिल्क वाली हो, रेनबो मिल्क वाली हो, यू नो, कड़क चाय हो, जो भी हो, बस चाय होनी चाहिए. तो सिंस यू नो माय ऑब्सेशन विद चाय हैज़ रीच्ड दिस लेवल वेयर यू नो नथिंग कैन रिप्लेस माय लव फॉर चाय, आज का सवाल चाय पे ही है. ये गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, आपको मुझे बताना है ये पॉपुलर गाना कौन सी मूवी का है. अगर हुक से आपको नहीं पता चल रहा, चलो मैं आपको पूरा गाना सुना देती हूँ. इफ यू नो व्हाट दिस सॉन्ग इज, ऑल यू गॉट टू डू इज टेल मी इस गाने का नाम.
3: एक गरम चाय की प्याली हो,
2: अनु मलिक का ये गाना है, एक गरम चाय की प्याली हो. माय एब्सोल्यूट फेवरेट यार, मैंने स्कूल में इस पे डांस किया था, फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे. इफ यू थिंक यू नो ये कौन सी मूवी का गाना है, एक गरम चाय की प्याली हो, All you have to do is call me on our toll free number which is 800-1062. Open couple movie tickets जीतने का मौका है आपके लिए. ये गाना कौन सी मूवी का है आपको मुझे बताना है, एक गरम चाय की प्याली हो. If you think you know ये कौन सी मूवी का गाना है, बहुत ही आइकॉनिक मूवी का गाना है यार, सलमान खान थे इस मूवी में. If you think you know the right answer, 800-1062 is the number. Get calling and walk away with open couple movie tickets.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल लेकिन गुरु रंधावा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इस गाने की. मैंने आपसे पूछा था कि ये गाना कौन सी मूवी का था. एक गर्म चाय की प्याली हो, क्योंकि इस गर्मी में इवन दो जो मेजोरिटी है ये मानता है कि यार नहीं ठंडा पीना चाहिए, आई स्टिल फील लाइक आई एम पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी दैट सेज नहीं, इस गर्मी में भी हम पियेंगे चाय. तो मैंने आपसे पूछा था ये गाना कौन सी मूवी का था. सो मेनी पीपल कॉल्ड विथ रॉन्ग आंसर्स बट अ फ्यू पीपल डिड कॉल विथ राइट आंसर्स, जिसमें से एक लकी विनर इज वॉकिंग अवे विद दीज कपल ओपन मूवी टिकट्स एंड दैट पर्सन इज शिवानी. Congratulations, Shivani, you've given me the right answer. Har Dil Jo Pyar Karega is the name of the movie, jiska ye gana hai. Open couple movie tickets hue aapke. Jana movie dekhna, koi na koi enjoy karna, but don't forget to have that cup of chai.
2: Prem bhai, are gira to.

0: के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Imagine your home powered by Next Level Fiber. With Fiber Plus from E&, enjoy advanced Wi-Fi 7 performance for faster streaming, smoother gaming, and expanded coverage in every room. More speed, more coverage, more performance. Experience the difference with Fiber Plus. Visit E&, to know more. T's and C's apply. E&, go for more.
1: Listen to her every day.
3: Mugambo, khush hua.
4: Hi Girish.
5: Hello Mansi.
4: नहीं अच्छी आवाज है ना आपकी, रुक जाओ मुझे पानी पीने दो, गर्मी बढ़ गई स्टूडियो में, एक सेकंड. ये सबसे आप ऐसी बैरिटोन में बात करते हो क्या, आज कुछ स्पेशल है?
5: Normally it does not sound so great in person, but over the phone maybe it's slightly better.
4: लड़िया नहीं, मैं आपसे पढ़ जाती हूँ ना फोन पर ही, हेलो पे ही?
5: No, of course not.
4: Why? मैं तो पढ़
5: रही हूँ.
4: आपने जैसे हेलो बोला मेरे दिल से ही आवाज निकल रही थी.
5: Okay, I would take that as a compliment.
4: सुना है गाना आपने?
5: मेरे
4: लिए दिल का टेलीफोन बजे रिंग रिंग रिंग रिंग. When was the last time you got a compliment on your voice from a girl?
5: Nah, it's been a very long time actually. I've forgotten.
4: Oh, you just keep calling me and I'll keep listening to you and I'll keep complimenting you.
5: Very sweet.
1: Keep your evenings electric. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू आर ऑन E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, आपको मिलेगा थोड़ा सा ट्रैफिक मुहैसा 4 के पास. ऑल्सो S102 शारजा रिंग रोड, अभी तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहां पे, 8 से 10 मिनट का डिले. E44 रसलखोर रोड, एक कार एक्सीडेंट हुआ था D3 के एग्जिट के पास, तो वहां पे उस वजह से अभी तक थोड़ा सा ट्रैफिक, 6 से 7 मिनट का वहां पर लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक मिल जाएगा आपको. थोड़ा सा ट्रैफिक है ऑन D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट बम्पर टू बम्पर, बट जस्ट फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स. एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: I am that person जो गर्मियों में भी 40-50 डिग्री में भी सिर्फ अपनी चाय और चाय और चाय पीती है. Are you that person, Ujjwal?
2: I don't know about that person, but she's also the same person जो गर्मी हो या सर्दी हो अपनी Instagram की reels बिल्कुल नहीं छोड़ती है. और बैकग्राउंड में काइली मिनोग का गाना चल रहा है.
1: हाँ, बिकॉज मेरी रील एडिट हो रही है फिलहाल.
2: व्हाट इज द सॉन्ग दो?
1: इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, कैन गेट यू आउट ऑफ माय हेड.
2: स्टार्टिंग कैसे होती है इसकी?
1: कैन गेट यू आउट ऑफ माय हेड ना ना ना ना.
2: तो ये इसका जो हुक है ये वायरल हुआ ना इस वक्त इंस्टाग्राम पे.
1: यू नो व्हाट इंस्टाग्राम डज, रैंडम गाने पिक करके इट मेक्स इट वायरल. जैसे ऊंचा लंबा कद बिफोर इवन द न्यू सॉन्ग रिलीज, इट वाज गोइंग वायरल बिकॉज ऑफ अ डांस. तो ऐसे गाने होते रहते हैं.
2: पर काइली मिनोग ने, डू यू नो, एक हिंदी गाना भी गाया.
1: ऑफ कोर्स.
2: Do you know the song?
1: Of course. I wanna shake it with
2: you.
1: Oh yes.
2: Very good. तो मतलब काइली मिनोग मतलब अच्छा रिज्यूमे है काइली मिनोग.
1: बहुत अच्छा. पहली हुई है हर जगह.
2: I think जैसे back to the गर्मी that she was talking about. गर्मी पहली हो कुछ भी हो, चाय का जो चस्का है यहाँ पे एक अलग लेवल का.
1: But are you also that person कि गर्मी में भी चाय?
2: मतलब मेरा तो एक दो एक हो जाए तो बस काफी है. नहीं हो पाता ज्यादा.
1: It's okay.
2: फिर एसिडिटी भी तो हो जाती है. बुजुर्ग सयाना शरीर है.
1: कुछ तूफानी करना चाहिए खतरों के खिलाड़ी. चलो ऑन दैट नोट, दिस बुजुर्ग इज गोना कीप यू कंपनी अप नेक्स्ट ऑन द बिग लाइफ. मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ज़ोहरा अमीन, वहां पर मेरा हैंडल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन 106.2 बिग FM. मेरी आज बहुत ही मस्त रील अपलोड होने वाली है, सो प्लीज डू गो चेक इट आउट, शो सम लव. आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग ऑन द बिग मिक्स. एंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड.
2: एंड ज़ोहरा की साड़ी उपलक्ष्य में आज हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस.
3: ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
2: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Mix miss किया गया?
3: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
4: अच्छा जसील, आपने कहा वैसे कॉकटेल का एक किस्सा आपके पास है, इंटरेस्टिंग, टेल अस अबाउट इट।
5: जी जी, एक्चुअली जब कॉकटेल फर्स्ट कॉकटेल आई थी ना, तो उस टाइम में एक रिलेशनशिप में आया था।
4: ओके, और ऐसी कॉकटेल रिलेशनशिप था फिर आपका?
5: हाँ, थोड़ा बहुत था।
4: क्या था? थोड़ा बहुत स्मॉल साइज का कॉकटेल जूस था।
5: इसीलिए आई थी, मुझे लगा ब्रेकअप हुआ मेरा 2014 में।
4: पिक्चर की वजह से ब्रेकअप हो गया? ये तो सुनना पड़ेगा, क्यों?
5: एक्चुअली जिससे मेरे जो मेरे रिलेशन में आए थे ना, हम लोग एक्चुअली फेसबुक पे ही हम लोगों ने बात की और शुरू की, और हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं। फर्स्ट टाइम में दुबई आया था उस टाइम।
4: अच्छा,
5: तो हमने यही प्रॉमिस किया था, हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे।
4: ओ, तो ये ब्लाइंड डेटिंग हो गई? ब्लाइंड डेट नहीं, ब्लाइंड डेटिंग।
5: थी। तो जब मैं 2 साल बाद रिटर्न गया इंडिया, तो उन्होंने ऐसा किया कि अपने आप को फेस नहीं किया, अपनी फ्रेंड को मेरे सामने फेस कर दी। तो मैं तो वही समझा, लेकिन वॉइस कहीं ना कहीं मुझे मैच नहीं कर पा रही थी।
4: तो आपको दोस्त से प्यार हो गया?
5: अब जब क्या करूं,
4: मतलब ओ रब्बा।
2: Cheer your midday mood Monday to Friday 10 AM to 2 PM. The Big Mix with Zohra only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.com.

0: सुनने लगी उनकी आवाज फ्रॉम द फिल्म दिल्ली हाइट्स. नेहा धूपिया इस गाने में थी बिग 106.2 पे. नाउ दिल्ली में तो हाइट्स है पनीर की, आपको पता ही है, वहां पे ये वाला चीज सबसे पॉपुलर है.
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का मसाला, सादा पनीर टिक्का, all that and more, and we all are like buffs of cheese, like the Indian cheese, which is the cottage cheese, which is the paneer. But यहाँ पे भी एक ऐसा चीज़ है तो बहुत पॉपुलर है. आज है नेशनल चीज़ डे. बिग 106.2 पे आप हैं उज्जवल खन्ना के साथ, we're a part of Fun Asia Network. तो मैंने सोचा कि आज इस रीजन की चीज़ की बात करते हैं, तो मिडल ईस्टर्न रीजन, या फिर आप थोड़ा सा कॉकेशन बेल्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ बड़ा प्रसिद्ध है और ये बड़ा नमकीन होता है, इसलिए यू नो मज़ा आता है इसको खाने में. ऑफकोर्स यू नो इफ़ यू हैव लाइक दिस चीज़ विद टमाटोज, ग्रिल टमाटोज, एंड इवन इफ़ यू सॉर्ट ऑफ टॉस इट अप विद लॉट ऑफ ग्रीन्स एंड सैलड, उसमें भी बहुत कमाल लगता है, स्वाद लगता है. एंड इट्स मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ गोट एंड शीप मिल्क. ओरिजिनेशन इसका कहते हैं कि साइप्रस में हुआ था, बट एग्जैक्टली नोबडी नोज कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये. एंड इट डेवलप्स अ वेरी फर्म एंड अ स्लाइटली रबरी, बहुत चुई होता है इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, अंग अंग अंग अंग अंग करके खाना होता है. एंड इट्स गॉट माइल्ड सॉल्टी फ्लेवर टू एज वेल. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? व्हिच चीज इज दिस? If you know the answer, 800-1062 is my toll-free number, which is 800-1062. Iski jo consistency hai, wo semi-hard hai. Jo milk hai, wo mixed hai, goat or sheep ka. Halaki abhi chunki, you know, bahut chunebazi ho rahi hai, to shayad cow milk bhi use karte hain isme. Aur iska jo pasteurization hai, wo pasteurized hota hai. Okay, 800-1062 is my toll-free number, which is 800-1062. Up next comes in Vishal Mishra ki awaaz mein. The track hai Sajna Hue, aapke saath until 5. Easy, nice, breezy, romantic soft tracks. That's what happens in my show, which is The Big Life. Ujjwal Khanna ke saath.

0: नावे
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Big 106.2, the

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 92.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
2: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
1: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

बस एक पल से गाना तो ट्रैक है तेरे बिन, आतिफ असलम की आवाज उज्जवल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे। दिस इज ऑल अबाउट इजी इज नाइस म्यूजिक। कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं इस वक्त, इज देयर एनी सॉन्ग दैट आई कैन प्ले फॉर यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्ले दैट। ऑल यू गॉट टू डू इज जाइए अपने मोबाइल के डीएम इंस्टाग्राम के और 106.2 बिग एफएम पे जाके अपनी रिक्वेस्ट आप ड्रॉप इन कर सकते हैं। आज मेरे थीम आवर में विल बी टॉकिंग अबाउट 90s के कुछ एक्शन फिल्म्स और उनके बेहद पॉपुलर ब्लॉकबस्टर गाने। जनरली एक्शन के साथ गानों को जोड़ा नहीं जाता, बट 90s एक दौर था जब एक्शन फिल्मों के साथ साथ रोमांस भी चल रहा था और कुछ ऐसे गाने निकल कर आए थे जिन्होंने एक्शन को ओवरशैडो कर दिया था। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जस्ट सम टाइम। तब तक आप अंकित तिवारी की आवाज़ में गाना सुनिए, द ट्रैक इज तू है कि नहीं फ्रॉम द फिल्म रॉय। नोबडी रिमेंबर्स दिस फिल्म, रणबीर कपूर की फिल्म थी। इट वॉज अ टोटल फ्लॉप शो। But yes, the song is very nice and it's been a long, long time that I've not played this. So this is for you, aapke saath, until 5, aap sun rahe hain The Big Life.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now.
1: This is Fan Network News from the BBC.
3: BBC News with Jane Steele. The Israeli Defense Minister has said his forces will continue ground operations in Lebanon despite the announcement in Washington of a renewed ceasefire. Israel Katz said the IDF had freedom of action backed by the United States. Conversely, the deal requires Hezbollah, which wasn't involved in the talks, to halt its attacks against Israel and withdraw from southern Lebanon. Correspondents say it's unlikely to alter much. In a resolution calling for President Trump to win approval from Congress to continue his war against Iran, 4 Republicans sided with Democrats in a vote being closely watched for divisions within its own party. Fiji has rejected plans by an Australian billionaire to send hundreds of thousands of tons of rubbish to the island nation to be burned for energy production. The government said Fiji would have become the Pacific's ashtray. The European Union has begun preparations for accession talks for Ukraine and Moldova. It follows Hungary dropping its previous objections. SpaceX has filed for what's expected to be the largest IPO in Wall Street history. Analysts say this could see Elon Musk become the world's first trillionaire. Fighting is reported to have continued in the Somali capital Mogadishu. Clashes between rival political factions broke out on Wednesday over delayed elections. A Nepali climber who went missing 6 days ago on Mount Everest has been found alive, crawling back towards base camp. Dalwa Sherpa got lost on the upper reaches of the world's highest mountain. He was presumed dead until he was spotted by a rubbish management team early on Thursday. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
4: कहाँ से शुरू करूँ? बस इतना समझ लो कि उस जैसा मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं. कभी वो मासूम है, तो कभी शैतान.
1: When the afternoon slows down, he speaks of love, life and light. The Big Life with Ujjwal on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: Good afternoon to you. Into my second hour of the show, up sun rahe the Big Life, Big 106.2 pe, Ujjwal Khanna ke saath. Well, Bollywood was beating at the fullest and its fastest during the course of the 90s. Aur jab action film mein aayi, to apne saath bahut sara drama, action ke saath masala aur wo kahani. You know, गरीब अमीर की और एक बच्चा जो है वो गुंडा बन जाता है, एक बच्चा जो है पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है. ये जो स्क्रिप्ट है वो बार बार रीराइट किया गया बाय लॉट ऑफ डायरेक्टर्स. और एक और चीज़ रीराइट करी गई, वो है इन सारी एक्शन फिल्म्स में ये धमाकेदार गाने, है ना, जो बेसिकली एपिक्स बन गए. फिल्म तो पीछे चली गई, ये गाने उसका बेंचमार्क बन गए, उनका बॉडी बन गए, उसका इंडेक्स बन गए. तो आज उन्हीं फिल्मों की बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स 90s के अगर एक्शन फिल्में हो और वो जो SFX जो 2 सेकंड के बाद बजते थे, यू नो, जो म्यूज़िक बजता था, जैसे कोई किसी को मार रहा है, डिश डिश डिश क्या डिश डिश, तो डिश भी जो 2 सेकंड के बाद बजता था और वो डिश भी इतना प्लास्टिक डिश था कि ऐसा कौन मुक्का मारता है, दैट्स नंबर 1. नंबर 2, गोलियां भी चलती थी, डिश क्यों डिश क्यों डिश क्यों, ऐसे कौन सी गोली की आवाज आती है. बट या, आई मीन दैट वर योर हॉलमार्क, यू नो, साउंड एलिमेंट्स दैट वर यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 90s. लेट्स किक स्टार्ट विद द फर्स्ट फिल्म अप. पिक्चर का नाम है थानेदार एंड द ट्रैक इज तम्मा तम्मा लोगे, जिसका भी वर्जन आया धुरंधर 2 में एज वेल. इस पिक्चर में थे जितेंद्र, जयप्रदा, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित. ये बनाई थी किसने, आपको पता है, राजसिप्पी ने. लेट्स किक स्टार्ट द फर्स्ट ट्रैक अप. इस पूरे घंटे 90s की एक्शन फिल्म्स और इनके इवन मोर पॉपुलर एक्शन वाले गाने. टेक इट अवे.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Chill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: 90s के कुछ एक्शन फिल्म्स के गाने आप सुन रहे हैं बिग 106.2 पे. अक्षय कुमार, ही वॉज द एक्शन हीरो ऑफ द 90s. बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं. ये अजय देवगन, सनी देओल, ये तीन चार ही थे जो जनरली उस टाइम पे एक्शन करते थे.
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2.
0: और इतने लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंसेस थे, 20-25 मिनट तक लड़ाइयाँ ही हो रही हैं, मतलब सब में, एंटागनिस्ट में, प्रोटैगनिस्ट में, और ये चलता ही जा रहा है, मतलब मामला रुक ही नहीं रहा है. बट हाँ, इसके भी लेयर्स होते थे. एंड एक दौर आया था ना एक्शन फिल्म्स का, सबको एक्शन फिल्म ही देखनी थी. इनफैक्ट अभी भी अगर आप जाओ तो यूट्यूब टाइप के सब्जेक्ट्स में, अगर आप किसी भी आम दुकान पर चले जाओ हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो अभी भी एक्शन फिल्में चल रही होती हैं, है ना. That was the flavor of Akshay Kumar's and Sanjay Dutt's and Ajay Devgan's film during that cost. Now, सबसे बड़ा खिलाड़ी से आपने गाना सुना. सबसे बड़ा खिलाड़ी में ममता कुलकर्णी भी थी इनके साथ इसी गाने में, और साथ में मनीष बहल भी थे. पिक्चर ने 4 करोड़ के बजट में करीबन 9 करोड़ कमा लिए थे, तो उस समय ये ब्लॉकबस्टर कहलाई गई थी ये फिल्म.

0: हालांकि जो स्क्रिप्ट था वो एकदम फ्लैट था, वीक था. बस आप एक्शन सीक्वेंसेस आधे पौने घंटे के दिखा दो एंड योर एक्शन फिल्म इज रेडी टू गो. लेकिन कुछ कुछ एक्शन फिल्म्स एक्चुअली कंपेलिंग थी. आज उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं फिल्मों की जिसमें ठीक है एक्शन चल रहा है, फिल्म चल रही है, स्क्रीन प्ले चल रहा है, लेकिन गाने वो बहुत पॉपुलर हैं उन सभी फिल्मों के. एंड फॉर्चुनेटली ये फिल्में भी ब्लॉकबस्टर हो गई. जैसे ये गाना जो आ रहा है थोड़ी देर में, जिद्दी से गाना, सनी देओल का गाना है. एंड द ट्रैक इज हम तुमसे कुछ ना कह पाए, हरिहरन साहब की आवाज. और उसके बाद विरासत, अनिल कपूर की फिल्म आई थी. What a lovely track and what a compelling film it is. ये दो गाने उस पार 90s के एक्शन थ्रिलर्स और इवन सुपर्ब सॉन्ग्स लेयर्ड टू देम. स्टिक अराउंड उज्जवल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे.
1: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ. रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे. मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता.
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month.
1: के कुछ एक्शन फिल्म्स के गाने आप सुन रहे हैं जो ब्लॉकबस्टर गाने थे अपने टाइम में. बहुत ही सॉफ्ट गाने हैं दोनों जो आपने सुने जिद्दी से और विरासत से उज्जवल खन्ना के साथ. बिग 106.2 पे दिस इज द बिग लाइफ.
0: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: उस दौर में सिंगल स्क्रीन्स इतनी पॉपुलर थी क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं और उसमें भी ब्लैक में टिकटें लोग ले रहे हैं. उसमें भी ना मिली तो अपर स्टॉल लोअर स्टॉल में बैठे हैं. आई डोंट नो, आप कभी लोअर स्टॉल में बैठे हो या कभी अपर स्टॉल में आप बैठे हो? बैल्कनी का तो आप सवाल छोड़ दो, अगर मिल जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं तो जो मज़ा लोअर स्टॉल में पिक्चर देखने का है वो एक्चुअली कहीं नहीं है. आई स्टिल रिमेंबर माई मामू मेड मी वॉच माई फर्स्ट एवर फिल्म. आई वॉज अ किड एट दैट टाइम. आई थिंक दैट वॉज खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वो जो रेखा का था ना पिक्चर अक्षय कुमार के साथ, मुझसे प्यार करना है इतना तू समथिंग समथिंग, अच्छा नहीं तो आजा नहीं तो बच के तू निकल ले जय माता के भक्त. सो दैट वॉज माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस इन अ सिनेमा हॉल. इट वॉज अ वेरी बेसिक सिनेमा हॉल इन ईस्ट दिल्ली एंड वहाँ पर मैं फिल्म देखने गया था. और तब मुझे एक ललकार आई थी कि ओ भाई साहब कितना मज़ेदार एक माहौल है वहाँ पे. सीटें लूटनी पड़ती थी आपको बिकॉज देर इज नो अरेंजमेंट फॉर रिजर्वेशंस इन द लोअर स्टॉल्स. वो ज़माना ख़त्म हो गया लेकिन एक्शन फिल्म्स का जो टोरा है ना अभी भी जो 90s का, वो अभी भी चलता है विद अक्षय कुमार, विद सनी, विद संजय, विद शाहरुख, सलमान, आमिर. देव ऑल्सो डन लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक दैट. जो मैंने थोड़ी देर पहले गाना चलाया था करण अर्जुन का, दैट वॉज बोथ सलमान एंड आमिर टुगेदर. चाहे उसका जो अंडरटोन हो वो पेट्रियाटिक वॉर हो, चाहे क्राइम हो, चाहे रिवेंज हो, चाहे फैमिली ड्रामा के थ्रू सालों की रंजिशें हों, ये सब दिखाया जाता था उन एक्शन फिल्म्स में. स्टे लॉक्ड ऑन उज्जवल खन्ना के साथ उनके बेहद popular gaane 90s ke action films case what I'm playing in my theme hour. Good afternoon to you.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
2: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दिलजले के गाना अजय देवगन, सोनाली बिंद्रे, बिग बॉन 6.2 पे कुछ 90s की एक्शन फिल्म्स के गाने आप सुन रहे हैं। उदित नारायण की आवाज में गाना है। अब नेक्स्ट कम्स इन विजय पथ, एक और बहुत बड़ी फिल्म तब्बू अजय देवगन की उस जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और उसका ये बेहद बड़ा गाना, उससे भी बड़ा गाना, फिल्म से भी बड़ा गाना, द ट्रैक इज रहा में उनसे मुलाकात हो गई आपके साथ अंटिल 5 o'clock। आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ, ऑल्सो यू गेट अ चांस ऑफ नॉट विनिंग द लाइफ बट ऑफ कोर्स अ लिटिल हैप्पीनेस इन योर लाइफ व्हिच इज टिकट्स, कपल इनवाइट्स, ओपन कपल टिकट्स। I'll set a question in the next hour once I walk in into the 4 o'clock. Stay locked on, aapke saath, until 5.

इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Chill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: This June, take your shot at millions with Big Ticket.
3: Score a guaranteed 25 million dirham grand prize.
2: Plus, five more winners take home 1 million dirhams each.
3: And weekly cash prizes still to be won.
2: So, what are you waiting for?
3: Buy your ticket now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2, the beat of Bollywood.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto spare parts dealer in the Middle East.
8: Big 106.2 पे गुड इवनिंग टू यू। बर्फ तो मेरे को लगता है गूगल के हिसाब से बर्फ ही पड़ रही है, क्योंकि अगर 34 डिग्री दिखा रहा है गूगल तो मतलब बर्फ ही पड़ रही है दुबई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। किसकी मानूँ, अपने मन की मानूँ या फिर ये टेक्नोलॉजी की मानूँ? मन की मान सकता हूँ, 34 तो नहीं हो सकता। ओके, नाउ इट्स शोइंग 34 डिग्री सेल्सियस पर इट्स फीलिंग लाइक 44 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ बता दो भाई, एक रास्ता बता दो, 44 माने या 34 माने, बस यही आपके सामने तापमान। दिस इज व्हाट द वेदर इज राइट नाउ। अप नेक्स्ट कम्स इन परदेसिया, दिस कम्स इन फ्रॉम परम सुंदरी।
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2, बिग 106.2 सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।

0: जिया का तो पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, पांव इतने ज्यादा जल रहे हैं, थोड़ा सा बालकनी में हम चले जाएं तो ऐसा लगता है कि बस हम सूरज के ऊपर ही खड़े हुए हैं।
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: गर्मी में भी जुराबे पहनने वाले जो लोग हैं ना घरों में, वो अलग हैं, वो अलग ड्रीम लोग हैं वो। अब वो पता नहीं है अपने मेडिक्योर के लिए करते हैं या फिर धूप से बचने के लिए, या फिर उनके घर में सदैव मिट्टी रहती है इसलिए वो ऐसा रखते हैं। एनीवे, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट समथिंग व्हिच वुड रियली एक्साइट यू। आपके मन की मिट्टी, आपके दिमाग की मिट्टी थोड़ी सी क्लीन होगी, स्पेशली अगर आपके पास बहुत ज्ञान है, तजुर्बा है फिल्म्स का, देन यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। ये गाना जो है आपने सुना दिल से शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, मनीषा कोइराला। प्रीति जिंटा और शाहरुख खान की बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये फिल्म दी, उसके बाद दो फिल्में और करी। एक फिल्म में ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन फिल्म में साथ थे, ओके। और एक फिल्म में तो ये साथ थे, लेकिन तब भी साथ नहीं हुए क्योंकि उसमें शाहरुख खान पूरे हो गए उस पिक्चर में। आपको मेरे को उस पिक्चर का नाम बताना है, ओके, जिसमें प्रीति जिंटा थी, शाहरुख खान थे, और बता दो तीसरा नाम भी, सैफ अली खान भी थे। चलो बहुत ही सिंपल हो गया अब तो। नाउ यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द फिल्म इफ यू नो द आंसर। 800-1062 इज माय टोल फ्री नंबर, व्हिच इज 800-1062। आई रिपीट, 800-1062। यू गेट अ चांस ऑफ विनिंग ओपन कपल टिकट्स। कोई भी फिल्म देख सकते हैं आप अपनी मर्जी के। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज माय मर्जी टू सॉर्ट ऑफ वॉच दिस वीक। 800-1062, प्रीति जिंटा, शाहरुख खान, सैफ अली खान। टेल मी द नेम ऑफ दिस फिल्म।
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा।

0: अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugembo! Khush hua!
5: हाय गिरीश।
6: हेलो मानसी।
5: नहीं अच्छी आवाज है ना आपकी, रुक जाओ मुझे पानी पीने दो, गर्मी बढ़ गई स्टूडियो में, एक सेकंड। ये सबसे आप ऐसी बैरिटोन में बात करते हो क्या, आज कुछ स्पेशल है?
6: नॉर्मली इट डज नॉट साउंड सो ग्रेट इन पर्सन, बट ओवर द फोन मे बी स्लाइटली बेटर।
5: लड़िया नहीं बाप से पड़ जाती होंगी ना फोन पर ही, हेलो पे ही?
6: नो ऑफ कोर्स नॉट।
5: वाय मैं तो पड़ गई, आपने जैसे हेलो बोला मेरे दिल से ही आवाज निकल रही थी।
6: Okay, I would take that as a compliment.
5: सुना ये गाना आपने?
6: Yes,
5: तेरे लिए दिल का टेलीफोन बजे रिंग रिंग रिंग रिंग। When was the last time you got a compliment on your voice from a girl?
6: Nah, it's been a very long time actually. I've forgotten.
5: Oh, you just keep calling me and I'll keep listening to you and I'll keep complimenting you.
6: Very sweet.
1: Keep your evenings electric. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: हॉर्न ओके प्लीज टाइप का एक मैसेज भी होना चाहिए न्यू ड्राइवर्स के लिए। बिग 106.2 पे आप हैं उज्जवल खन्ना के साथ, आप सुन रहे हैं बिग लाइव। मेरे सामने मानसी बैठी हुई है। वैसे हॉर्न तो यहाँ पे बजाते नहीं है बिकॉज ऑफ द डिसेंसी एंड स्टफ, बट भाई ये स्टिकर ही काफ़ी है, मतलब ये अपने आप में ही चेतावनी है कि दूर कितना स्पेस होता है। एक गाड़ी का स्पेस होता है ना, आप तीन चार गाड़ियों का स्पेस रखो लेकिन बहुत दूर, क्योंकि एकदम से ऐसे झट से जैसे ब्रेक लगती है ना उसके बाद आपको पता चलता है कि ठाठू हो चुकी है तब तक। राइट नाउ ठाठू हो रही है इस वक्त, शेखजाद रोड पर अगर आप हैं तो मोहसिन के आसपास आपको मिलेगा थोड़ा सा ट्रैफिक, नेशनल पॉइंट्स के आसपास मिलेगा ट्रैफिक। इस वक्त आप सफीर मॉल के आसपास ट्रैफिक मिलेगा, वहाँ पे भी अल्कुज इंडस्ट्रियल एरिया 2 के आसपास स्लो मूविंग ट्रैफिक है। अगर आप बर्षा साउथ में हैं तो ट्रैफिक ठीक ठाक है, जेबीसी की तरफ से आ रहे हैं तो ट्रैफिक आपको स्लो मूविंग मिलने वाला है। बात करूँ अर्जान की साइड, ट्रैफिक मिलेगा वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको पैचेस में, एंड इस वक्त अगर आप मॉल ऑफ द एमिरेट्स के आसपास हैं ट्रैफिक आपको वहाँ पे भी स्लो मिलेगा। एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट मी इन 4305 व्हिच इज 4305 राइट आफ्टर कपल ऑफ ट्रैक्स। आई विल कम बैक एंड अनाउंस द नेम ऑफ द विनर जिनको मिलेगी ये कपल टिकट्स, स्टिक अराउंड।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: शंकर महादेवन की आवाज बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ,
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Well, chances of winning you couple invites. You can watch a film of your choice. जो भी आपको देखनी है, whatever film that you feel like watching. Theater is all yours. The tickets are all yours. All you need to do was answer a very simple question, and I asked कि प्रीति जिंटा और शाहरुख खान ने एक फिल्म में काम किया था विद सैफ अली खान. Which is that film? दिल से मैं उन्होंने काम किया साथ में, वीर ज़ारा में काम किया. This is another film. ये कौन सी फिल्म है? Telephone line पर I've got Dulari to speak to. Hi Dulari.
2: Hi Ujjwal, how are you?
0: I'm good Dulari. मतलब घर का ही नाम जो निकनेम होता है वही तुम्हारा रियल नेम भी है. हाँ
2: In life, many things are boring. We can make it interesting.
0: How do you sort of do something to the purchase orders?
2: I listen to radio.
0: Okay, yeah, that sort of makes it a tad interesting, I believe. Yeah. Okay, so Dulari, tell me about this film. What am I talking about? Kaun si film hai ye?
2: Kal Ho Na Ho.
0: That's right.
2: Thank you so much.
0: 3,200 bari to tumne dekh li hogi Kal Ho Na Ho. अच्छा ये बताओ कि कैमियो अपीयरेंस किसका था कल होना हो में, दो एक्ट्रेसेस का?
2: काजल.
0: हाँ.
2: और दूसरी.
0: 3, 2, 1 अभी भी याद नहीं. रानी मुखर्जी भी आई थी उसी गाने में. देखो करण जौहर की पिक्चरों में ये दोनों का होना बहुत जरूरी होता था उस समय. कंग्रेचुलेशंस. ओपन कपल टिकट्स आपको मिलती है. कोई फिल्म जो आपको देखने का बहुत मूड है इस वक्त, व्हिच इज द फिल्म दैट यू विल वॉच?
2: मेरा एक्चुअली इंग्लिश में था
0: ऑब्सेशन.
2: Obsession is amazing. I watch. It's okay, like too
0: okay,
2: good.
0: Okay, you've already watched it. Okay, then
2: I want to watch Gizama. Gizama.
0: Ah, Gizama. Okay. All right. Kudos to you. Congratulations. All the details will be relayed shortly.
2: Thank you.
0: एक आधे दिन आपको फोन आ जाएगा हमारी टीम से. Okay.
2: Sure.
0: Okay,
2: bye.
0: Bye.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

अरिजीत सिंह के पास टाइम टू रैप इट अप फ्रॉम माय साइड. प्लीज पानी पीते रहिए. हमेशा भूल जाते हैं एसीओ के चक्कर में कि भैया पानी भी तो पीना जरूरी है. एंड देन वी बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिशियंट वाटर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद हम फिर बीमार हो जाते हैं. प्लीज रिमेंबर ड्रिंकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. ऑलवेज कीप योर बॉटल ऑन स्टैंड बाय. अपने सामने रखो जैसे अपनी महबूबा या व्हाटएवर जिसकी भी फोटो आप रखते हो सामने. सिमिलरली गोज विद H2O. ओके, रैपिंग इट अप. अप कम्स इन मानसी इन अबाउट से 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ फॉर द बिग थ्रिल 5 to 9 with the, all that excitement and the evening razzmatazz and madness. I'll see you tomorrow sharp at 2 till 5 on Big 106.2. keep following us on 106.2 Big FM as well. Leaving you with Arman Malik, and the track is Jab Tak.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव? थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: начал отново бъдена.
1: Love, love, love this song, though I still miss the OG, but I'm very happy कि इस गाने को ज़्यादा tweak नहीं किया है. From है जवानी तो इश्क होना है जो रिलीज हो रही है कल, एंड यहाँ पे ओपन मूवी टिकट्स जीतने का मौका है आपके पास. आप है जवानी तो है इश्क होना देख सकते हैं. यू कैन गो एंड वॉच बंदर. देयर सो मेनी ब्रिलियंट मूवीज कमिंग अप. ऑल्सो वी गेटिंग इन टू लॉन्ग वीकेंड, सो आज शाम भी योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स courtesy of Vox Cinemas. एंड वी आर ऑल्सो प्लेइंग द 5 second रूल. फोन लाइन्स आर बजिंग. अगर आपने भी खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
2: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: जी, ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ली? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill, Mansi. We playing the 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ categories. तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. Joining us right now is Pallavi. And Pallavi is saying कि मेरी colleague बैठी है. मैंने कहा देखो मेरा फोन हमेशा लग जाता है. ये बात तो सही है. Pallavi का फोन हमेशा लग जाता है.
2: Thank you so much, Mansi. Thank you so much,
1: Pallavi. नहीं, thank you so much के मतलब कोई मेरे लिए भी flex कर रहा है. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये. So, how was your day? कहाँ जा रही हूँ with colleagues? Are you guys carpooling because of the fuel prices?
2: Yes, fuel prices. Yes, absolutely. But yeah, we had some work, so we're heading back to business day, and the traffic is as you said crazy.
1: What plans? Weekend is right here.
2: Nothing, Amansi. Nothing much. But yes, कुछ ना कुछ तो करेंगे. Probably इतनी गर्मी है तो कहीं बारिश की जगह तो जा नहीं सकते. Unfortunately, बस
1: यार weekend पे travel कर लेते हो?
2: अच्छा
1: मुझे लगा कि ऐसे क्या आज क्रोसॉ खाना है तो हम फ्रांस जा रहे हैं वीकेंड के लिए. यू नो देसी ब्लिंग. आई वांट टू आस्क यू, आई वाज टॉकिंग अबाउट कृति सैनन दैट शी वाज ऑन 800 कैलोरी डाइट व्हाइल शी वाज इन इटली. कैन यू लाइक सर्वाइव विदाउट योर फेवरेट फूड स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ वेकेशन?
2: आई विश यू कुड सी मी, बट अगर आपने मुझे देख लिया तो यू विल बी लाइक नहीं कुछ खाती नहीं पल्लवी. बट आई एम अ हॉगर. I'm a big ogre. I eat.
1: But चढ़ता नहीं है कुछ.
2: I eat a lot. नहीं यार, that's the best part.
1: अरे, you're God's favorite child. मैं तो भाई हर full moon पे manifest करती हूँ कि हे ऊपर वाले मैं सब खाऊं और कुछ लगे नहीं. मैं उनमें से हूँ जिसे हवा भी लग जाती है. So I have to be very mindful of my food. I'm very jealous of you, Pallavi, right now. Filhal, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You know the rules. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: 3 food items that start with the letter P.
2: 3 food items.
1: हाँ.
2: पानी.
1: ये देखो इसलिए ये पतली है. 3 food items with P तो कह रही है पानी. पिज्जा, पराठा, पास्ता. मूविंग ऑन. 3 बॉलीवुड एक्टर्स जिनका नाम M से शुरू होता है.
2: मिथुन दा
1: और
2: महेश बाबू.
1: 5 सेकंड के अंदर जवाब देना है. फटाफट खेलने वाला गेम है. 3 things that you absolutely want to change about your colleagues. अरे मजा. Why not?
2: ये तो बांधी. This is a tough part.
1: Why not?
2: 3 चीज़ यार. Gossip, all gossip.
1: बिग रेड फ्लैग्स फॉर यू इन अ रिलेशनशिप.
2: झूठ बोलना, डिसऑनेस्टी, लेट आना और प्रेशर बच्चे होना.
1: तो आपको मिल गया है रेड फ्लैग, मतलब ग्रीन फ्लैग.
2: एक कभी एक मिलता है, कभी 2 मिलते हैं. 3 एक साथ मिल नहीं पा रहे अभी तक.
1: क्वालिटीज या बंदे एक साथ 3 ढूंढ रही है?
2: नहीं नहीं मानसी, इतना कैपेसिटी नहीं है. एक ही बंदा जिसे 3 आ जाए.
1: आई थॉट ये 3 अलग अलग ढूंढ रही है.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह यस.
1: I would love to be your friend. के यार एका तो यहाँ भी भेज दो, बहुत टाइम हो गया है. बट पल्लवी आज बहुत खराब खेला. That's not nice.
2: Yeah, no worries.
1: That's not nice at
2: too
1: all.
2: Too much traffic. Stressful traffic.
1: But it's always fun talking to you. What's your colleague's name?
2: Jovita. And she's sitting next
1: Hi,
2: to me.
1: Hi, Jovita. Does she have green flags, red flags?
4: Hello. No, not at all.
1: So you both are single?
4: Yes, absolutely.
1: I think half of the girls I know are single. So, हाँ यार, मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ ही घूमती रहती हूँ. पूरे लॉन्ग वीकेंड उसी के साथ मैं भी गेड़ियाँ मार रही थी. हाउ आर यू गाइस फाइंडिंग बॉयज? कहाँ जा रहे हो बाहर?
2: हम लोग शायद अभी तो वापस जा रहे हैं, बट प्रॉब्ली वीकेंड रसल खेमा.
1: रसल खेमा में कौन मिलेगा?
2: अरे
1: ढूंढने के लिए तो ढूंढना पड़ेगा. फिर भी मुझे लगता है मुश्किल होगा. मुझे लगा ये रसल खेमा में जा रही है ढूंढने के. बस अब हो गया मेरा दुबई से. आई रूल आपने खेलना है तो एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पर. आई टोल्ड यू द गेम साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट इतना आसान है नहीं.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Hanji, this is the Big Thrill with Mansi, and the weekend is right here, Baju mein. If you want to go and watch any movie that you feel like, because bahar to bahut garmi hai, to at least malls mein, theater mein, aap AC mein baith ke एक अच्छी मूवी देख सकते हैं. आई थिंक मूवीज देखने का मजा थिएटर में पॉपकॉर्न के एंड समोसों के साथ ही आता है. सो या ओपन मूवी टिकट्स आप जीत सकते हो. वी टॉकिंग अबाउट दिस मूवी जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी. वी सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी. ब्रिलियंट स्टार कास्ट एंड इट इज वन मूवी दैट आई रीविजिट एवरी नाउ एंड देन. नाना पाटेकर, अर्जुन रामपाल टुगेदर एंड ऑफकोर्स रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, मनोज बाजपेयी. तो अब कास्ट ही इतनी कमाल थी, इट इज अ कल्ट. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड अ चांस टू विन, बट फिलहाल वी आर ऑल्सो प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. अगर लगता है ये कर पाओगे तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल. पत्थर

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurancemarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, yeah, Big Thrill, I'm Mansi. We're playing the 5-second rule. Bhakti hamare saath. Hi, Bhakti.
3: Hi.
2: How are you?
3: Good, how are you?
2: Very, very good. Bhakti, yaar, bada achha naam hai. Kiski bhakti mein hai bhakti aajkal?
3: बस भगवान की.
2: हाँ, जरूरी है. जिस हिसाब से दुनिया जा रही है उन्हीं की भक्ति में ही सब संतुष्टि एंड सारा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. फिलहाल व्हाट डू यू डू भक्ति?
3: लुकिंग फॉर अ जॉब.
2: थैंक गॉड यू सेड लुकिंग फॉर अ जॉब. आई थॉट शी सेइंग लुकिंग फॉर अ गाय. मतलब दिस इज द रॉन्ग प्लेस. ओ, यू लुकिंग फॉर अ जॉब. किस फील्ड में?
3: मार्केटिंग.
2: So anyone who is looking to hire a very, very stunning marketing person, marketing head, marketing director, please get in touch with Bhakti. How can they get in touch with you, Bhakti?
3: They can get in touch with my LinkedIn profile.
2: What is your LinkedIn profile?
3: Bhakti, and my last name is Zhuting, Zhuting.
2: Bhakti, just send her a request if you have any openings in the marketing field. I think Bhakti is the right fit. Ye bada... अलग सरनेम है. आर यू फ्रॉम द माउंटेन्स?
3: नो, आई एम नॉट. इट्स एक्चुअली अ वेरी अनकॉमन महाराष्ट्रियन लास्ट नेम.
2: ओह, फिलहाल भक्ति विल प्ले द 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी है 5 seconds के अंदर. ऑल द बेस्ट.
1: थैंक यू. 5-second रूल.
4: ओह यस.
2: तीन शाहरुख खान की मूवीज भक्ति.
3: कल हो ना हो, दिल दुल्हनिया एंड दिल तो पागल है.
2: वेरी नाइस. Three things that start with the letter Y.
3: Three things. Oh, Y.
2: Yacht.
3: Yeah, yacht.
2: अरे हो गया time.
3: खत्म.
2: हाँ, time खत्म हो गया. Moving on. तीन ऐसे गाने जिनके title में दिल आता है.
3: दिल तो पागल है.
2: Okay.
3: दिल देके देखो. हाँ. दिल वाले लगा ले जाएंगे.
2: Almost there. Three reasons why someone should hire Bhakti. मैं कहने वाली थी बहुत आसान था. गुड लुक्स, गुड लुक्स, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: Not bad, Bhakti. You played really well for the first time. And I really hope someone slides into your LinkedIn DMs. And the next time you call me, you tell me कि Mansi हो गया है. अब चलो पार्टी करते हैं. जॉब लग गई है. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच भक्ति.
3: थैंक यू सो मच मानसी. बाय
2: बाय. वेल, ये है 5-second रूल. अगर आपने खेलना है तो इट्स वेरी वेरी सिंपल. जस्ट गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. देखो, हम ये भी करते हैं. सोशल सर्विस, जॉब वॉब चाहिए फोन करो. लड़का वड़का चाहिए मुझे मत करो, मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ.

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, मैं हूँ मानसी एंड उमल क्वीन से आके अजमान बॉर्डर में कहीं फंसे हुए हैं मंसूर साहब. गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग मैम.
1: कैसे हैं आप सर?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है.
1: नहीं, आप इतने शर्मा शर्मा के सबसे बात करते हैं कि कुछ स्पेशल है आज?
2: नहीं नहीं, पहली बार बात कर रहा हूँ ना.
1: अच्छा, दूसरी बार शर्माओगे नहीं?
2: डर लग रहा है ना.
1: डर किस बात का? आप लड़कियों से बात करने में डरते हैं?
2: हाँ, शादीशुदा बंदा हमेशा डरता है ना.
1: वो सारे नहीं डरते हैं, आप पहले हैं, वरना शादीशुदा बंदे तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं लड़कियों से बात करने में. हमसे पूछिए ना, हमें पता है हमारे आसपास कितने घूमते हैं. क्या करते हैं मंसूर आप?
2: मैं वेयरहाउस मैनेजर.
1: वेरी नाइस. सो आपका काम उमल क्वीन में है एंड आप रहते हैं अजमान में?
2: मैं रहता दुबई में.
1: अच्छा, तो रोज ही अप डाउन करते रहते हो अजमान उमल क्वीन में आप? मतलब पूरा यूएई घूम लेते हो रोज?
2: हाँ.
1: तो फिर आपके पास टाइम कहाँ होगा? आप अजमान उमल क्वीन यही करते रहोगे तो इसलिए आप जो है घर पे भी कम बात करते हो और घर के बाहर तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम भी नहीं है. क्योंकि ये जो करते है ना बात कई लोगों से, उनके पास बहुत वक्त होता है, क्योंकि वक्त देना भी पड़ता है ना. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम मंसूर. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें आपको बतानी होंगी 5 सेकंड के अंदर. मुझे ऐसे ज्यादा उम्मीद नहीं है आपसे, बट फिर भी खेलते हैं.
0: 5 सेकंड रूल.
3: Oh yeah.
1: 3 सलमान खान की फिल्म्स.
2: हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, बागी. हम आपके हैं कौन.
1: वेरी नाइस यार, पहला बिल्कुल सही. आपने 5 सेकंड में जवाब दे दिया है. 3 ऐसी चीजें जो व्हाइट कलर की होती हैं, सफेद होती हैं, आप खा भी सकते हैं.
2: तरबूज होता है.
1: तरबूज सफेद होता है. कौन सा सफेद तरबूज आप खा रहे हो? तरबूज लाल होता है.
2: व्हाइट कैरेट.
1: व्हाइट कैरेट यार, पनीर, दूध, चावल छोड़ के व्हाइट कैरेट ही कौन सी चीजें हैं जो कभी सुनी भी नहीं और 5 सेकंड भी खत्म हो गए हैं. 3 ऐसी चीजें अगर आपको मौका मिलता तो आप अपनी बेगम के बारे में बदल देते.
2: उनका पेशेंस. शक की बीमारी.
1: किस चीज के लिए शक करती है? बंदा बेचारा जो है वो सारा दिन गाड़ियों में घूमता रहता है. एक टाइम खत्म हो गया, पर मुझे बताओ किस चीज को लेकर शक करती है?
2: लड़कियों का नेचर होता है ना, हस्बैंड उसको लगता है कि दुनिया की पूरी लड़कियां उनके हस्बैंड के पीछे.
1: आप पे तो वैसे शक करना नहीं चाहिए मंसूर, आप तो गाड़ी में घूमते रहते हैं, गर्मी इतनी एक जगह से दूसरी जगह. आप कहाँ किसी लड़की को कहाँ मिलेंगे वेयर हाउस में आप?
2: हमारे फ्रेंडी ऐसी है कि चांस ही नहीं मिलता.
1: हाँ तो समझाओ उन्हें, शक ना करें. और गुस्से वाली है?
2: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, माशाल्लाह.
1: अच्छा, ये जो बात पलटी है आपने. अच्छा, 3 चीजें जो सिर्फ और सिर्फ बीच पे मिलती है. और हाँ, टाइम खत्म. फटाफट खेलने वाला गेम है. 3 बॉलीवुड एक्टर्स जिनका नाम ए से शुरू होता है.
2: अरबाज खान
1: और
2: आमिर खान.
1: वेरी नाइस. अक्षय कुमार. कौन सा शर्मा?
2: अक्षय कुमार.
1: हाँ, अक्षय कुमार मैंने बोला है, पर आपने बढ़िया खेला. आपके जवाब जो है वो 4-5 सेकंड के बाद आते हैं, बट आपको जवाब पता है. थोड़ी रफ्तार की जरूरत है, थोड़ी रफ्तार की. और आप पहली बार कह रहे थे ना कि बात कर रहा हूँ तो शर्मा रहा हूँ, शायद अगली बार खुल जाए आप तो फटाफट खेलें. मजा आया नहीं आया?
2: नहीं, थोड़ा क्या होता है ट्रैफिक में होते हैं ना, ध्यान थोड़ा रास्ते पे होना चाहिए.
1: ज्यादा ध्यान रास्ते पे होना चाहिए, वहाँ पे फाइन लग जाएगा.
2: बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो थोड़ा इसके लिए. बहुत बहुत मजा आया.
1: चलिए, एंजॉय योर इवनिंग, ड्राइव सेफ एंड थैंक यू सो मच.
0: Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों री, तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, this is the Big Thrill. Thursday is almost done. Weekend aa gaya hai and I'm giving you a chance right now to win open movie tickets. Aaj hi ke din on the 4th of June 2010 mein ye movie release hui thi. Ab ye movie mere dil ke bahut kareeb hai because this movie was shot in my hometown Bhopal. But what a brilliant movie and what brilliant casting from Manoj Bajpayee to Ajay Devgan, Nana Patekar, Arjun Rampal. Saath mein Ranbir Kapoor and Katrina Kaif. I think for all those who love great cinema, aapne ye movie kai baari dekhi hogi. The movie was directed by Prakash Jha, jo jaane jaate hain apne realistic cinema ke liye. And commercially bhi ye movie bahut bahut successful hui thi. In fact, it was a mix of the Mahabharat and the Godfather. So let me see how many of you remember this movie. I'm going to play you a dialogue. And maine to ye movie kai baari dekhi hai.
2: Tu yahan kya kar raha hai?
3: Suraj naam hai hamara. आजाद नगर से.
2: हाँ, कबड्डी चैंपियन. कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए?
3: पार्टी का टिकट लेने आए हैं.
2: अच्छा, खैरात बट रहा है यहाँ. पार्टी का टिकट चाहिए. सुना नहीं था तूने उस दिन जब तू नौटंकी दिखा रहा था अपने बैंड वालों के साथ? आजाद नगर से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार होंगे. जीवन कुमार, अब चलो यहां से. मार्शल,
3: हमने सुना था लेकिन आपने शायद ना सुना ना देखा कि आजाद नगर के लोगों ने आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया ऐलान के साथ ही.
1: हम लीड. अगर आपको याद आ गया ये कौन सी मूवी थी, देन जस्ट गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062. आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन 2010. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द मूवी एंड इफ यू डू, दिस इज योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक. फिलहाल आई एम गोना टेक यू टू अ मूवी दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट. बट अगेन, व्हाट ब्रिलियंट सिनेमा. आई थिंक अर्ली 2000s इज माई फेवरेट जॉनर फॉर मूवीज एंड फॉर म्यूजिक.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.4

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi giving you a chance to win open movie tickets. Also, agar aapko abhi tak nahi pata hai and aapne bahut sare Instagram and Facebook stories pe logon ko dekha hai apna प्लेज सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन शेयर करते हुए, लेट मी टेल यू, दिस इज एन इनिशिएटिव दैट ऑफर्स सिटीजंस एंड रेसिडेंट्स अ चांस टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी टू द यूएई लीडरशिप एंड रीअफर्म देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द नेशन. इफ यू वांट टू साइन अप फॉर द प्लेज, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, द वेबसाइट टू विजिट व्हेन आई कम बैक. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद
2: दूध उबालोगे दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
0: Yeah. And with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
0: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Again? The car's not starting.
3: I think the battery's gone.
0: Then stop guessing. Get Solite batteries.
3: What's special?
0: Premium Korean tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
3: Wow, that's smooth. Where do I find it?
0: AutoPro Fast Track Dialer Battery Auto Studio. Any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
4: The Big Mix. Miss kiya gaya?
5: Inkar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
6: अच्छा जसील, आपने कहा वैसे कॉकटेल का एक किस्सा आपके पास है, इंटरेस्टिंग, टेल अस अबाउट इट।
7: जी एक्चुअली जब कॉकटेल फर्स्ट कॉकटेल आई थी ना, तो उस टाइम में एक रिलेशनशिप में आया था।
6: ओके, और ऐसी कॉकटेल रिलेशनशिप था फिर आपका?
7: हाँ, थोड़ा बहुत था।
6: क्या था? थोड़ा बहुत स्मॉल साइज का कॉकटेल जूस था।
7: इसीलिए आई थिंक मुझे लगा ब्रेकअप हुआ मेरा 2014 में।
6: पिक्चर की वजह से ब्रेकअप हो गया? ये तो सुनना पड़ेगा, क्यों?
7: एक्चुअली जिससे जो मेरे रिलेशन में आए थे ना, हम लोग एक्चुअली फेसबुक पे ही हम लोगों ने बात की और शुरू की, और हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं। फर्स्ट टाइम मैं दुबई आया था उस टाइम।
6: अच्छा,
7: तो हमने यही प्रॉमिस किया था, हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे।
6: ओ, तो ये ब्लाइंड डेटिंग हो गई। ब्लाइंड डेट नहीं, ब्लाइंड डेटिंग।
7: थी। तो जब मैं 2 साल बाद रिटर्न गया इंडिया, तो उन्होंने ऐसा किया कि अपने आप को फेस नहीं किया, अपनी फ्रेंड को मेरे सामने फेस कर दी। तो मैं तो वही समझा, लेकिन वॉइस कहीं ना कहीं मुझे मैच नहीं कर पा रही थी।
6: तो आपको दोस्त से प्यार हो गया?
7: अब जब क्या करूं, मतलब।
6: ओ रब्बा।
4: Cheer your midday mood Monday to Friday 10 AM to 2 PM. The Big Mix with Zohra only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: यार शेख जाद रोड को क्या हो गया? अभी तक 1 घंटे का ट्रैफिक जाम है। इट इज सो स्लो मूविंग, द स्टिल ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद, नॉट एज बैड एज शेख जायद, बट स्टिल अ 45-minute डिले। एंड देयर इज ऑल्सो ट्रैफिक नियर नादुल शीबा। Traffic trailing very very slow Dera se if you're going towards Nahada. Heavy traffic pure route par. There's traffic near Karama, Mankul, Udmetha side. Bumper to bumper Gold Souk ke paas. Bahut hi slow moving traffic Jumeirah Road pe. Plus if you're going further towards Umsukim, aapko traffic milega. Still slow moving if you're around the Alkuz Industrial Area and Hissa Street. Iske alawa koi aisa area ban jaye jahan traffic nahi hai, mujhe batao. 800-1062 par.
4: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी। आपकी गाड़ी गाने धुरंधर के बज रहे हैं, आप जो है ध्यान से गाड़ी चला रहे हैं, बट इफ यू आर वंडरिंग कि यार गाड़ी चलानी तो है, रेंट पे लेनी है, बट रेंट करना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सेल्फ ड्राइव डॉट ए ई। एंड इफ यू थिंक के कार रेंटल्स एक्सपेंसिव होते हैं, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। सेल्फ ड्राइव डॉट ए ई हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। एग्जैक्टली 899 दिरहम्स अ मंथ एट दिस प्राइस, पेइंग मोर जस्ट डजंट मेक सेंस। कोई ओनरशिप नहीं, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, जस्ट पिक योर कार एंड ड्राइव, दैट्स इट। सर्च फॉर सेल्फ ड्राइव डॉट ए ई और डाउनलोड द ऐप नाउ। सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे।
0: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव डॉट ए ई।

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ली? तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill with Mansi. And joining me also is Mansi, my name twin. Hi.
2: Hi Mansi, how are you?
1: Hi Mansi, I'm good. यार कितना अजीब लगता है ना अपना खुद का नाम लेना.
2: Exactly, but मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ, जब मैं आपको फॉलो करती हूँ, आप इतने अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हो, मजा आ जाता है देख के.
1: Hi, so sweet. अब देखो मानसी नाम में ही कुछ है ना, मतलब दोनों मानसियाँ टैलेंट कूट कूट के भरा है, बस दुनिया देख नहीं पा रही है.
2: नहीं, अब तो दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है.
1: So Mansi, what do you do?
2: I'm a homemaker.
1: Generational shaper.
2: Generational shaper, yes.
1: कहाँ पे हो इस वक्त? घर पे हो? क्या कर रहे हो? खाना वाना बना लिया है? बन गया है?
2: खाना तो हो गया, 7 o'clock.
1: खा लिया? अरे ये वाली मानसी भी हेल्दी है.
2: आपको देख देख के ही हो गए.
1: नहीं, हमारी तो मजबूरी है भाई, हमें तो हवा भी लग जाती है, इसलिए संभाल के खाना पड़ता
2: है. अगर आपको हवा लग जाती है तो पता नहीं हमें क्या क्या लगता है, हम कैसे हो जाते हैं. आपकी तो आपको पता है, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैं अपनी सेल्फी लगाती हूँ ना अपने इंस्टा स्टोरी पे, तो मैं गाने आप ही के ही देखती हूँ. ये गाने भी ये गा रहे थे, मैं भी लगा लेती हूँ.
1: आ गया मानसी, क्या प्लान है?
2: हमारा वीकेंड तो सच्ची में आज से शुरू हो गया, क्योंकि शारजा में रहते हैं. फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन.
1: वेरी नाइस यार, वेरी वेरी नाइस. अजमान में जो वर्किंग आवर्स कम हो गए हैं, शारजा में 3 दिन की छुट्टी है. कर लो यार, कोई दुबई वालों के लिए भी कर दो.
2: जल्दी जल्दी हो जाएगा.
1: सो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज रिलीज हो रही है, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट अ मूवी जो आज ही के दिन 2010 में रिलीज हुई थी. आई प्लेड योर डायलॉग, अजय देवगन, मनोज बाजपाई, अर्जुन रामपाल, रणबीर कपूर, ब्रिलियंट स्टार कास्ट. व्हाट वाज द राइट आंसर?
2: राजनीति.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट. अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके घर में सबसे ज्यादा राजनीति कौन करता है?
2: माय हस्बैंड
1: है.
2: मैं जितनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह पे बोलने वाली हूँ, वो उतनी डिप्लोमेटिक है, तो आधी बातें तो समझ में नहीं आती, बोल क्या रही हूँ.
1: पूरी सत्ता अपने पास ही रखते हैं?
2: नहीं नहीं, सत्ता मेरे हाथ में ही रहती है.
1: अच्छा, सत्ता आपके हाथ में रहती है, बट ही इज द डिप्लोमेटिक वन.
2: या तो ही द डिप्लोमेटिक वन. फिर जब बातें सुलझ जाती हैं, फिर उसका रहती हूँ, मैं भी तो यही बोल रही थी.
1: आई थिंक वो मानसी नाम में प्रॉब्लम है, फिल्टर है ही नहीं हमारा. ये हमारे घर वालों की गलती है.
2: तो ये भी ये कहते हैं थोड़ा सोच समझ के. मैंने कहा यार एक बात बताओ, बंदा चाहे कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, सुनानी तो है ही, डायरेक्टली सुनाओ, अपने भी क्यों बोझ लेना, खत्म करो.
1: 100% मैं कह रही हूँ, कोई अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको उसको 10 times और परेशान करो.
2: एग्जैक्टली, खत्म करो. हम क्यों बोझ लेके सोए रात को, हम मस्त सोएंगे, उसे सोचने को क्या
1: किया. दिस इज द वे टू लिव लाइफ. फिलहाल आई एम गिविंग यू 2 tickets टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक. एंजॉय योर वीकेंड. कांग्रेचुलेशंस.
2: Thank you so much. And one thing I want to tell you, that thanks a lot. आधे weekend तो आप ही हमारे sort कर देते हो through Instagram कि ये पाकिस्तानी देख लो, serial ये देख लो, तो आधे serial ऐसे ही sort हो जाते हैं हमारे.
1: नहीं यार, बड़े अच्छा content है, brilliant shows there. So,
2: exactly. तो आपकी वजह से तो मैं बिल्कुल बोर नहीं होती. मंडे टू थर्सडे जब मेरा बच्चा स्कूल होता है, मेरा पति ऑफिस होता है, 7 to 3 मैं आराम से देखती हूँ.
1: बस ये मुझे लग रहा है ये वाली मानसी बोलती जाए और ये वाली मानसी सुनती जाए, क्योंकि तारीफ कम हुई होती है मेरी तो आज हो रही है. तो कोई करो,
2: फैशनिस्टा आप और उसका कंटेंट क्रिएटर जिस तरह से आप करते हैं, मजा आता है आपकी बातें सुन के. आपकी तो कई बातें सुन के हम खुद हील भी हुए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग.
1: हाउ स्वीट. तो बार अब राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो आई एम गोना प्ले यू दिस वन. Remember the gala?
2: Oh,
1: I love this song too. So we'll play this one. Celebrating Rajniti. You have a great evening and enjoy your weekend.
2: Same to you. Have a productive day and enjoy your weekend.
1: खत्म हो गया बहन मेरा दिन, अब मैं घर जाऊंगी एक घंटे बाद.
2: करती है ना? हाँ, उसके बाद ही तो तुम्हारा दिन शुरू होता है. हम सबको हील करके, हमें हंसा के, उसके बाद आपका दिन शुरू होता है.
1: हाय, जिस नजर से ये मुझे देख रही है ना, अगर सिर्फ 4 लड़के देख लेते तो बस हो जाता मेरा भी कल्याण. बट
2: जल्दी जल्दी.
1: यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच. बाय
2: बाय, टेक केयर. बाय.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 34 degrees outside, low jayega around 31. Filhal pretty humid though, it's 56% per humidity.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अगर आप भी 9 to 5 वाली पसूड़ी से परेशान हो चुके हैं, काफी टाइम से आप बहुत सारे बिजनेस आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि बस आप अपना बिजनेस शुरू कर दो. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू दैट, अजमान फ्रीज एंड अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. दिस इज ब्रिलियंट न्यूज फॉर ऑल दोज हू विश टू ओपन देयर स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज. नाउ यू कैन डू दैट विदाउट एनी डिले विद द फी स्टार्टिंग

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए ई
1: इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए ई
0: लव लोफाई एंड नाइट फील्स योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड ओनली ऑन द बिग जेल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड

0: No rush, no noise. Just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जिहा, किसे छीमे सप दे डंग वर्गा, आज दिन चढ़िया

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.ie.
1: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।